0: खूबसूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज़ रेडियो अमन 88.4 का रत, जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मुसीकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज़, आपका एहसास।

0: आवाज दस्त दसरो नो आवाज
1: गुरगुरे तोर तोर द गुंडे ओ सर द मखे
0: रेडियो अमन नेटवर्क वन रंग अमन अमन।

हे गुरुरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज रेडियो अमन 88.4 करत जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।

आप सुन रहे हैं रेडियो 88.4 करक, जहां मौसीकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो 88.4 करक, आपकी आवाज़, आपका एहसास।

0: त्रसे बजूर से पहाड़ जिसे तुसिता मिला विदाईशी मकिन से तुसिता नूरजान जनरल स्टोर उदे देना इलावा पहाड़ जनरल स्टोर से तुसिता दस्तियाब दी।
1: खुश खबरी खुश खबरी, हुजीफा कंपनी वाला शिफा तेल का बड़ा दावा। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शिफा तेल का जवाब आपको नहीं मिलेगा। शिफा तेल अरब मुमालिक, यूरोपी मुमालिक, मलेशिया, चाइना वगैरह में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। शिफा तेल पुराने गंजेपन के लिए नहीं बल्कि अभी गंजे हो या गंजे हो रहे हो तो शिफा तेल के इस्तेमाल से बाल गिरना बंद हो जाएंगे, नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे, बालों को गन्ना लंबा करता है, खारिश खुश्की सिकरी खत्म, मर्द औरत दोनों के लिए यकसा मुफीद है। हुजीफा कंपनी शिफा तिल पिशावर बन्नू लक्की करक डीआई खान खैबर पख्तूनख्वा पिंडी इस्लामाबाद के अक्सर जनरल स्टोर और बेकरियों में दस्तियाब है। नवी दरियाफ शवी ददवा थोरो निशान वाला हुजीफा कंपनी शिफा तिल चिसड़ाए वख्तिनाए गंजाए नवी ओसोस गंजे शवी भी याए दसर वेख्तान गुरजीगी नो अगा सड़ाए चे सौ रजे शिफा तिल पपल सरबा ने मालश की नो दद पसरबो दुबारा नवी वेश्तान पैदाशी। शिफा तिल वेश्तान गुरजवल बंदवी वेख्तान गण औ उजद कवि देसर खारश खुशकी पीना पखा हम खत्म कवि जनना मर्दना द्वाड़ो दपारा बराबर फायदेमंद। मजीद मालूमातो दपारा पदे नंबर राबिता कवले शे 0331 397 36 36 और बल नंबर

हाँ जी रेहान ना फरियाल चिकी मादो हापा शव्य वापा रीनो नो पता नष्टा चे मुना वेले हापा कीजी दा खाल का नो फरियाल तो यहाँ चे हापा के जमा सांदरा होगा देखा वाला कीजी हो पार रीन चे किम काल दे तुरो गलाय वा अगा डेर लाइट लेट टेम रो गलाय वा हो चलो जी बिया हम तो प्रोग्राम से देरता हर कलाई खुश आमदीद आया आवाज

आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मौसीकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज़, आपका एहसास।

Acha wait to make your to Shihan sweet by Jani dedicated to Faracha for you. Roshihan Yahoo Bazan Zare Zarekram. Ya bada ilam gul palas kalita ulama dera shata pa yo jahan manana thank you so very much wai che salamuna and adab lala sang ye dera braze pas I'm Nadia Bahar from Waziristan acha wai che salamuna zama sweet bhai Mirza Ghalib tha Roshi Khan ta acha o desara sa acha shayari wazir ta o isra isra bilkul ghazal wazir ta theek chala kehna ghazal wazir ta salamuna kadi yo jahan manana okay ji wai kana che it's me shafahad raz bhai pasho she welcome dartavya yo sarangi ye shay raz bhai acha sa shay samulikali okay chi data ki mane poina shwa shafahad yo jahan manana khushula rutao se che show ke the message wokdo mish pe ko tiktok yo umid laru daga thamal aru chito se bakhar ta chik hoye hamesha gul gul usay abad usay wai cha as masib mandan banu na wai cha assalamu alaikum chacho how are you show is very nice chacho a listener aapko urdu acha paper di hai अच्छा लिसनर ने आपको उर्दू पेपर दिया है तो उर्दू पर से बहुत ओके जी आसमा सिफ वालेकुम सलाम थैंक यू सो वेरी मच खुशो लरोता वो से थैंक यू सो वेरी मच द मैसेज कवलो थैंक यू सो वेरी मच यो जहान मनना नेक्स्ट वाइज सलाम प्लीज प्ले उस्ताद शावली अच्छा शरारा पश्तो सांग अच्छा मीना और अच्छा और दे सड़किया बाजी दासी टाइम संदर ईवी कना छ आगा गजलदार प्रोग्राम सर लश की टूट न खुरी साते जे संदर ईवी कना नो बिया अगे दे वजे मिजा कोशिश वीच मिज गजल रो रो शाह गजलदार प्रोग्राम ते गजल रो खु बिया गजल खलो और दुन को ता कला कला वानी मदा से संदर ई पके प्ले के शाह कोशिश पको यो जहान मनना द मैसेज का बोलो नेक्स्ट वीक मी क्यूट रो शिहान स्वीट भाई जानी टिकट फॉर यू